कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा, सगल समगरी तुमरा सूत्र तारी तुम ते हो सो, तुमरी गत मित तुम्हें जानी नानक दास। एक ओंकार वाहगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती समर कै गुरु नानक लई त्याए, फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो समरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याये जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे करनो निदावे ताए, सब थाई हुए सहाय। दसवा पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी, सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहा साहब जादियां, चालिया मुक्तियां हठियां जपियां तपियां, जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया। देख चलाई तेग वाही, देख के अंडठ की तातना प्यारियां, सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी। जिन्ना सिंघा सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए। गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सवासां नाल निभाई, तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, चित आवै चित आवन का सदका सर्व सुख होवै। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत, देख देख फतेह बिरध की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नु सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाह दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान, श्री अमृतसर जी ते इशनान। चौकियां झंडे बंगे जुगो जोगे अटल, धर्म का जयकार खालसा जी बोलो जी। सिखा दा मन नीवा मत उची, माता राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख, अपने पंथ देश दा सहाय दा तार जियो। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामां दे, जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है, खुले दर्शन दी दार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणिया दे माण। नितानिया दे तान न्योटिया दी ओट, सच्चे पिता वाहिगुरु आप जी दे पावन पवित्र चरण कमलां पास। अरदास बेनती जोदड़ी प्रार्थना है पातशाह जी, आप जी दे हजूर संध्या समय नूं मुख रखदिआं, सो दर रहरा साहब जी दी पावन बाणी दे जाप कीते गए समुची सेवा निभाउंदिआं, आप जी दे बच्चिआं पासों होईआं बेअंत भुल्लां चुक्कां दी खिमा अगांह तों समत बख्शिश करनी, समूह संगत दी अरदास बेनती प्रवान करनी। कदम कदम लेखे विच लाउणा, आप जी दीआं बख्शीआं दातां दे विचों तिल फुल भेटावां दर ते प्रवान करनीआं। दरों करों गुरसिखी जीवन, नाम दान दी दात अमृत वेले दा जागना, नितनेम दी दात बख्शिश करनी। मनोकामनावां शुभ भावनावां गुरमत अनुसार पूरियां करनियां, काम क्रोध लोभ मोह हंकार तों बचा के सत संतोख दया धर्म धीरज दीआं दातां बाणी बाणे नाल गुरु दर दे नाल प्रेम प्यार बख्शिश करना पातशाह जीओ। इन्हां समयां नूं मुख रखदिआं आप जी दे हजूर कड़ाह प्रसाद दी देग हाजर है, दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शिश करनी, कृपा करो पावन हुकम दी दात बख्श के समूह संगत नूं निहाल करो, अखर वाधा घाटा भुल चुक माफ करनी। सरबादे कारज रास करने सही प्यारे मेल, जिन्हां मिलिआ तेरा नाम चेता वै, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा गया पई अकाल की तबै चलाए, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां, जो प्रभ को मिल बोच है

कर कीर्ते आखिए करते का होए विचारो तित कर गावो सोहेला सिवरो सिर जनहारो तुम गावो मेरे निरभाव का सोहेला हो वारी जिस सोहेले सदा सुख होए रहाओ नित नित जीवड़े संभालियन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवै तिस दाते कवन सुमार संबत साह लिखिया मिल कर पावो तेल देहो सज्जन सीसड़िया जो होवे साहिब सिओ मेल घर घर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिय नानक से देहे वन राग

एक खसम हमारे नमक नमक तुम ही परत पालो हम बारक तुम रहे तारे जेवा एक कवन गुण कहिया बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना किन्ही लिए रहाओ कोट पराध हमारे खंडो अनक विधि समझावो हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम आपन बिरद रख

रारे बहुड़ न गर्भ मजारी जियो नानक ज्ञान रतन परगासिया हर मन बसिया निरंकारी जियो। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सोरठ महला पहला तू प्रभ दाता दान मत पूरा हम थारे भिखारी जियो। मैं क्या मांगू किस थिर न रहाही हर दीजे नाम प्यारी जियो। उड़ धरती पुड़ पानी आसन

सो प्रभु तिसके पाए लगाऊं वैसा तीरन क्यों बाडिया जिन्ना प्रेम बिछो हर साजन पुरुष सार कै लगी माया तो पोत कल तरना संग तना हर वलासियो पल पल सगली मुई झूठे तंदे बो एक सार के नाम बिन अगे लिए खोए देव सार बगुचना रब बेने अवर न कोए प्रीतम चरणी जो लगा तिरकिन

तिलाएं दो जाम इतना दे नहीं पिएदा छाड़ गड़ो ते खरे माए जो सो लगा है त आदम रोड़े तन गबै स्याहो हो वासे जेहा भी जैसो लुड़ै कर्मा सम राखे दान प्राप शरण आगति चरण बोध प्राप देता से पादो नरक न पाई।

न काहूं जोग परमेश्वर ते पुल्या व्यापन सभे रो बेमुख होए राम ते लगन जन बह जाओ किन में कौड़े हो जाए जगड़े माया।

जैस मन वसे नारायण सो कहिए भगवंत जी की लोचा पूरी है मिले स्वामी कंत नानक जी वह

सो जीविया जिस मन वसिया सोए नानक अवर न जीवै कोय जे जीवै पत लथी जाए सब हराम जेता किस खाए राज रंग माल रंग रंग रता नचे नंग नानक टगया मुठा जाए बिन नाम पद गया गवाए महला पहला क्या खा दे क्या पै दे जाए जा माना ही सच्चा सो क्या फादे क्या खादे क्या पैदे होए क्या खादे क्या पैदे होए

गंढ पाए, भुख्या गंढ पाए जा खाए, काला गंढ नदिया में झोल, गंढ प्रीति मिठे बोल, वेदा गंढ बोले सज गोए, मुया गंढ नेकी सत हो, एद गंढ वरते संसार, मूरे गंढ पाए मोमार, नानक आके ए विचार, सिवती गंढ पाए दरबार पौड़ी, आपे कुदरत साज के आपे करे विचार, एक खोटे एक खरे आपे फरखनवार, खरे बजाने पाइए खोटे सटिए बार बार, खोटे सच्ची दरगे सुतिए के सागे करे बगार, सतगुरु पिछे पाज पया करनी सार, सतगुरु खोटे खरे खरे सब सवार नवार, सच्ची दरगे मनिय गुर गए प्रेम प्यार, गर तेरा दी को क्या करे जो आप बख्शे करता। श्लोक महला पहला, हम जेर जिमी दुनिया पीरा मस पेसा कर आया, मैं रब बादशाह जो खुदा एक तू

0: सगले अपल क्या सगले नानक निरभव रंकार सच्चे कुमला पहला
1: नानक निरभव रंकार होर के तेरा मरवाल के तिया कान कहानियां के ते वेद विचार के ते नचे मंगते गड़मर पूरे ताल बाजारी बाजार में आए कटे बाजार गावे राडे रानिया बोले अल्पता लख टके आके मुंडड़े लख टके आके हार जित तन पाइए नानका सेतन हो वैशार ज्ञान नंग लई ढूंढिए कतना करड़ा सार करम लेता पाइए और हिकमत हुकम को

जिनकी रेख पत पव चंगे सही के पौड़ी चुर कर्म जना कुछ पाया तात नी खसम ते आया एना जनता के बस किच नहीं तू देखी जग तू पाया एक नानो तू मेरे ले या एक आपो तो दुखवाया गुर कृपा ते जाने जिथे तू दया बुझाया सहजे ही ससमाया सहजे

सच में आशय सात रहे सबको सत समावे करे प्रभु राम नाम देवा मैं सुरना लै प्रचित जाए नानक त मुख अंतर पाए जुज मैं जोर श्री चिंद्रावल कान कृष्ण जादम भया पार जाद गोपी लै आया बिंद्रा बण में रंग किया

बाबा जी ने कहा मैं मूर्ख हर हर जप पढ़िया ना जाना क्या गत राम हमारी। आख्या मैं ना पंडतां दीआं विधियां द्वारा तेनू गाउणा सिमरतियां शास्त्रां नूं पढ़ के ना मैं जोगियां वांगू गुर गुर करदा, क्योंकि वह दावे करते ने पंडित ने दावा किया भी शास्त्र ते सिमरत पढ़ के मैं रब नूं उहदा भेद पा लिया। जोगी ने सवाह मल के यह दावा कर दिता। जिहड़ा वचन पढ़ता ना जोग न खिंथा जोग न डंडा जोग न भस्म चढ़ाइया जोग न मुंदी मूंड मड़ाया, उहदे विच जोगियां दी गल सारी कीती है भी वह कहिंदे साडा मिलाप हो गया जी असीं ते पा लिया रब नूं। बाबा जी कहिंदे कीमत पाए, उहदी कीमत नहीं पाई जा सकती।

आखे भी मैं रब नूं मंग लवांगा किसी तरीके नाल ते नहीं उत्थे भी कोई जोर नहीं चलदा, कोई धक्का नहीं चलदा। ते जे कोई आखे भी मैं इन्ना दान दे दित्ता ते हुण मेरा जोर चल जावेगा,

केसे तेर ना रहाई, हर दीजे नाम प्यारी जियो। कड़ कड़ रावरिया बनवारी, जाल थल मैयल गुप्तो वरते, गुर शब्दी देख निहारी जियो। रहाओ मर्त प्याले आकाश दिखायो, गुर सतगुर कृपा तारी जियो। सो ब्रह्म जोनी है भी होनी, कड़ पीतर देख मरारी जियो। जन्म मरण को ये जग पपड़ो, इन दूजे भगत विसारी जियो। सतगुर मिले तो गुरमत पाइए, साकत बाजी हा।